आकाशवाणी इम्फाल की मेगाहर्ट्ज़ ड्रामा घूम दसी मंगा दस दुकटरीबा एफ एम संगाई चैनल दिग्नी अदोन थोरम ताबिरी बसी हौजिक पुंफम सिद ताबिरी बसिंग की दमक ता बुदुन लाक्चरी सी देहिदा नसी की सी देहिदा तक पुजरकली नुंसित ईना खुदुम चनबा हारिबा लाइना असी की मतांग दा खजिक तंग हाना मैं पुनः खमीनसी मांस यामन हेन चाबा यू यामन थकबा अमगा अमगा यांचिन नदुना चाबा अमदी सगोल न चिंबा तुंगदुना यामन सांग न चटपन चिंबा मरम देगी नुंसित अमसुं ई न फत्तदुना नुंसित इगी लेना पोकलगी खुद की नत्रगा खोंगी खोंगसा देगी हौरकदुना मथंग मथंग हकचांग पुनमकता लागी अनाबा से लागत्रिंगे की ममांगदा हकचांगदा खुमांग याम न थोकबा नत्रगा खुमांग थोकतबा हकचांग की मफम मफम मुसुक मुबा नत्रगा गांगसंग गांगबा खुदम मधुदा सोकबा पाइबा खंगदबा हकचांग की ताइनफमदा चिकबा खोतबा अमसुं मतम मतमदा नाबा तनबा हकचांग चुकथबा हकचांग की मफम मफमदा चोंगबा साबा हकचबा फुतिन की मतौगुमना तौबा नत्रगा चेखाइबगी मतौगुमना नाबा हकचांग की मनुंगदा ककचिंग न चटबगी मतौगुमना लेंग लेंग चटपा अमदी करीगुंबा मफमदा सोकपदा यामना नाबा अमसुं असोकपदु थुन फबा गमदबन चिंगबा मोहुंग मतौ उबा फंगी अनाबादुना मपुंग फारबदा नुंगसित न हेंदुना लेंगबा चोंगबा लेंब चोंब कायरबगुम नाब चुम पोंब सिंगली खुदा पुनम सजिंग हकचांग लेंगम सांगमदब निकप सोकप पाइब गमदे हकचांग की इन हेलबद हकचांग गांगसंग गांगब पोंब मदुद हकचब मयेक थोकप का हेन साब चिंग चिंग लाउबन चिंब मोंग मतौ उब फंगी असिगुमलब अनाब सिन कलबद लाइथुंग लेना की मतौगुमना मोहुंग मतौ पुनम फोंटोकलगी अदुगुमलब नुंसित इगी लेनादा खुबी चिंथेई उनसा चेखाइदुना मरेक थोकलई उनसा दु पुमथरई हकचांगदा घी पोगलई अदु ओइरबदि अनाबादु लायेंबद मतिक चाद्रे महौसाना चही अमगी मतुंगदा नुंसित इगी लेना असी लायेंबद मतिक चाब ओइरई मरम असिना मथक हाइब मथक की मसक फोंदोकलब नुंसित इगी लायेंब असी कने हौजे मुक मयाम पुन खमीनर असी नुंसित इन खुदुम चनब असी फननब पांबई सिंग अहानबद थोइदिंग अमुब मरु अदु थाउद हाबलग मईद थोंगलग संगुम गलोइन तिनरग तांग तांगद साब चिक चिक लाब सोकपद सोकपद पाइबद खंगदब अनाब अदुद तैरबदि फै निम्मरु निम्मकु निम्मना निम्महै अमसुं

0: अनी सुब मिस्टर नॉर्थ ईस्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप 2026 मणिपुर की टीम ना टीम चैंपियन ओइरखरे सेप्टेम्बर 13-18 फाउब चथकी चैंपियनशिप मणिपुर टीम की गोल लौरखी मरक्तगी प्रीतम नहाकपम अमदी वर्थन लुंगोगा टेलीफोन की खुथांग चयोल सिद मणिपुर की मिहुत का वारी सानब की सरुख खरा ताहंजरी
1: गोल लौर
2: बॉडी बिल्डिंग की लम सिंशन बेरी से कयामुक्तगी सानाबसी हौबीरपनो ओजा कना कना की मखाद सानाबीरपनो हाइबदुसु थांदियु
1: अदुम आइजे जिमोन सना सिंतही तरु इकिना सिले अदुगा सो तोना फदना शेरो बेरी आइ ओजा मखाद सना सिंतही अनि जमाना फार आइ कनो ओजा अदुन हिसाब मंगलेंबा आ ओजा मखतने मा मखाद अदुम अदुम लिंग बेरी होसिले
3: चयोल की पुथोक्चब खुदोल चयोल सिद मणिपुर मथंग थांगजा पुंफम असिमक्तदा अनौब थौदोक सिंग लोइनन अमुक फंगबिगनी चयोल सिद मणिपुर
4: ताबिरे चयोल सिद मणिपुर थौरम पुथोकपा सगोल सिमरोमा पुथोकपदा तिंगबांग बसिंग खाइदेम विक्टोरिया इरुंगबम मनिष्ना अमदी युरेका युरेमबम थौरमसी इमा लैसेम इनाट लोइसंग पंथौ इसाइकोल नुंग सिलोइलेमाइ चिंगी तिंगबांग लोइनना पुथोकचब थौरमनी मतांगसिदा खोंजोल नाचोम संदोकचब लुइजरी

0: आकाशवाणी इम्फाल निथो खोंगजम सुनी न पाउ पाजरी आहानबद मरोइबो पाउ कुन सुबा रोजगार मेलादा ngasi nuthil प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ नब खलब नहा लिशिंग यांखै माथो हेनबद अपॉइंटमेंट लेटर येंथोकने सिक्किमद अहान बोइन सरकार की सीट चाम लेबा मेडिकल कॉलेज अम संगाख्रे फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनामिक्स हाइबसिद नुमितनी सथगदब मिफम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi नई दिल्ली द हुदोख्रे अमसोंग कुन सुबा एशियन गेम्स जापान की आईची नागोयाद ngasi nuthil पुंग अनी मखाइदगी हौरगने कुन सुबा रोजगार मेला ngasi nuthil प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगद सरकार की तोान तोाम विभाग ऑर्गेनाइजेशन सिंग नौन थब खलब नहा लिशिंग यांखै माथो हेनबद अपॉइंटमेंट लेटर येंथोकने थोरमसिग मरी लैनना प्रधानमंत्री ने नौन थब खलब मियोइसिंग वा गांगने रोजगार मेला असी लैबाग असी तोान तोान मफम निफूमंगाद पांथोकने नौन थब खलब कैंडिडेट सिंग तोान तोान मंत्रालय सिंग विभाग सिंग मरुएन रेवेन्यू रेलवे गृह मंत्रालय हक्सेल मंत्रालय ने चिंबद थब जोइन तौगने कुन सुब रोजगार मेला लैबाग नहा लाख तरह निथो लिशिंग हुबुद्राम रोम मंगा रोम सरकार थब फंगनबंगमले सरकार असिना लेप लेतने नहा सिंग लैबाग थब थौरम सिंग हेन मपुंग फान सरुक यानब खुदोंचाब सिंग पीनबगी थौरांग सिंग पाइखतुना लाखले सिक्किमद अहान बोइन सरकार की सीट चाम लेब मेडिकल कॉलेज अम संगाख्रे कॉलेज एकेडमिक सेशन असिदगी हौरगने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग नहाय अहान बोइन हेलेन लेप्चाद हांगदोक्लिब सिक्किम मेडिकल कॉलेज राज्य इतिहास हक्सेल की लम अनोब पंदुप अम हांगदोक्ले मेडिकल कॉलेज राज्य नहाब महिरोय सिंह मगुन लेब मेडिकल की शिक्षा फंगनब की खुदोंचाब अम पीरि सेशन हौदोपगी थौरम व्हाइट कोट सेरेमनी की थौरमसु पांथोक्खे नीति आयोग की मेंबर जोराम अनियाग अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल के टी प्रणायक उनदुना राज्य की तोान तोान लम सिंग कूं खनख्रे लोक भवन उनदुना खनबद राज्यपाल प्रणायक ने अरुणाचल प्रदेश की महुसाद की पुथोचरीब पोलम सिंह ट्राइबल हेरीटेज ने चिंबद अहम मिदेंगं लम से हेन कुमांग यांशिनब थौरांग सिंग पाइखत्पिनब तक्षिनखे लिसिंग अनी निफू तरेट विकसित भारत उहेनब पांदम थमलिब असिद विकसित अरुणाचल प्रदेश उहेनबगी पांदमसु याउनब मिफम अदुद खनखे तुंग कोइगदब थौरांग सिंग असानब मिदेंग लोइनना राज्य सिगिदम पाइखनबसु नीति आयोग की मेंबर द फोंदोखे मणिपुर द एनआरसी सनद्रिब फाउब मिकोक थिबगी थबक अमत पांथोप यारोय हाइना ngasi नॉर्थ इम्फाल मैरापाइ बी एंड क्लब्स और कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ने सेंदुना इम्फाल वेस्ट की खोंगाम पातले वकत मिफम जाथख्रे लेकाई कुन की मैरा पाइबी क्लब की मियोय सिंह सरुक यादुन पांथोली वकत मिफम असिद येलोमी सिंह कन्नब सरकार ने थब पाइखनब दाबी तौरी विष्णुपुर जिला की नंबोल साबल लेकाई दा हौखिब सही लिसिंग अनी कुन मंगा की ngasi की नुमित असिद थोखिब लाइबक्तिब थौदोक्त लेखिद्रब कुंत्रा हुमदुई सुब असम राइफल्स की पर्सनल अनी की मफम दा इकाई खुमनब उत्पगी थौरम अमा हौजे पांथोले मफम अदुगी खुंजा सिंह अमसुंग कुंट्राउम दु सुब असम राइफल्स ने पुनः छिनब थौरम अदुद मियोय क्याने लेखिदब पर्सनल सिंह की मफम दा लै सुकतुन इकाई खुमनब उत्खे असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल AVSM SM लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा असम राइफल्स की पर्सनल खुदमंगना मखोगी मफम दा इकाई खुमनब उलखले सिक्योरिटी कॉन्वय लेतबनासी जिरीबाम इम्फाल थोकदब गाड़ी थाद्रे जिरीबाम पाउमी नहाय हौजिक जिरीबाम ऑयल टैंकर मंगा याउन अतै पोलम सिंग पुब गाड़ी चहुम हुफुमाथोय पंदुन लेरे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हायरी मणिपुर याउन अवांग नोंपोकी राज्य सिंग अकनब नोंग चुरब याय नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला नोंपोक थंग राजस्थान याउन तोान तोान मफम सिंग अकनब नोंग चुरब याय हायरे गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ असम मेघालय अवांग थंग कर्नाटक लक्षद्वीप अखाक अराव याउन नोंग चुरब याय अंडमान निकोबर इथत अखाक अराव याउन अकनब नोंग चुगने हायरे ताबिरिब पाव असे आकाशवाणी इम्फाल दगेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनामिक्स हिरमद नुमितनी चुमना नई दिल्ली द पांथोकदब अंतरजाति मिफम ngasi हौदोख्रे प्रधानमंत्री नहाय हौकिब सही तरह निथोय असिद भारत ने तोान तोान लम सिंग याउन अकोयबगी फिवम गाक सेनबगी मतांगदा हेन मांगजिल थाना चंगसिलकले ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯁꯥꯊꯤꯌꯣ ꯑꯥꯖ ꯀꯥ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯔꯌꯥꯕꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯛꯁꯥ ꯀꯦ ꯑꯄꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯆꯤꯟ ꯕꯤꯆꯥꯔꯣ ꯀꯣ ꯑꯥꯙꯨꯅꯤꯛ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯦ ꯄꯤꯔꯣꯇꯦ ꯍꯨꯏ ꯑꯥꯒꯦ ꯕꯗ ꯔꯍꯥ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯇꯦ 12 ꯕꯔꯁꯣ ꯃꯦ ꯄꯔꯌꯥꯕꯔꯣꯟ ꯁꯦ ꯖꯨꯗꯦ ꯍꯔ ꯛ꯭ꯁꯦꯇ꯭ꯔ ꯃꯦ ꯍꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯃꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯅꯦ ꯑꯁꯥꯙꯥꯔꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯒꯇꯤ ꯀꯤ ꯍꯦ ꯍꯃꯥꯔꯥ ꯕꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯄꯔ ꯔꯍꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯅꯦ ꯄꯔꯌꯥꯕꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯛꯁꯥ ꯃꯦ ꯕꯗꯤ ꯚꯨꯃꯤꯀꯥ ꯅꯤꯚꯥꯏ
0: ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯪꯍꯩꯔꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯃꯥꯖ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯅꯥꯒꯣꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯅꯨ ꯚꯥꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯖꯤꯟꯗꯔ ꯄꯥꯜ ꯁꯤꯡ ꯇꯨꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒ ꯕꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 5 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ 38 ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯣꯟꯇꯤꯟꯖꯦꯟꯗ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛꯇ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 5 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯆꯅꯨ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯀꯣꯟꯇꯤꯟꯖꯦꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯄꯤ ꯚꯤ ꯁꯤꯟꯙꯨꯅ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯂꯨꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯚꯂꯤꯅꯥ ꯕꯣꯔꯒꯣꯍꯥꯏꯟ ꯑꯃꯟ ꯁꯦꯔꯥꯎ ꯑꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 36 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤ ꯁꯦꯄꯥꯛ ꯇꯥꯀ꯭ꯔꯧꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 12 ꯎꯁꯨꯒꯤ 3 ꯀꯦꯅꯣꯌꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯌꯥꯛꯀꯤꯡꯒꯤ 6 ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ 3 ꯍꯣꯀꯤꯒꯤ 4 ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤ 3 ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯒꯤ 3 ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯣꯁ 3 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯂꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯖꯄꯥꯟꯕꯨ ꯋꯤꯀꯦꯠ 9 ꯊꯣꯏꯈꯤ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯥꯌꯦꯟꯁ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯟꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ LIC ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨ LIC ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ 2012ꯗꯒꯤ 2018 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ₹300,000,000 ꯅꯝꯊꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯜꯂꯤ CBI ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯌꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯇꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ LIC ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯍꯥ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 23 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 15 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ 6 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯍꯤꯔ ꯁꯍꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 90 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯃꯤꯆꯝ 30 ꯁꯨ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥ ꯎꯜ ꯃꯨꯖꯥꯍꯤꯗꯤꯅ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯃꯦꯂꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯅꯧꯅ ꯊꯕꯛ ꯈꯜꯂꯕ ꯅꯍꯥ 50,000 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ꿤 ꯁꯤꯠ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯩ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯅꯥꯒꯣꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

ममाउ दो हिंचा भी दो मनीम दो हरिबा फिल्म दो दगी से ऐसी ताहन जखी बगल लोई ना नसी की ओइना दे गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम संदोक चबा मतांग से दलो चिंजरे नसी की ट्रांसमिशन से द ड्यूटी द लेबिरी बा इंजीनियर सिख दे इलांगबम ओपेन रो मदी देवजेन पोसंगबम ट्रांसमिशन से द ड्यूटी द लेबिरी बा स्टाफ आरामबम चिंगलेम्बा अदोंगे टेलीफोन ओक्चखिबी कोंजिंगबम निर्मला चनुना थोरम ताबिरम लिबा मदी सरु याबि रखिबा पुमनमपु अमुक कहना थागत प फोंगदोक चरी थोरम संदोकना तहनजरी बसी आकाशवाणी इम्फाल गी एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक चैनल असगी मखा तारकपा थोरम गीत मलागी दमक अदोंगे एंकर बेबी रोशनी दा खुशी नजरी।

धन्यवाद निर्मला। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीत माला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज शनिवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक हीरो। आप ये पहले गीत सुन लीजिए और अनुमान लगाइए कि आज का एक हीरो कार्यक्रम किस गायक पर आधारित हो सकता है।

जी हाँ श्रोताओं, आपने सही अनुमान लगाया है। आज का एक ही रूप कार्यक्रम आधारित है गायक उदित नारायण के गानों पर। अभी आपने सुना कहो ना प्यार है फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना इब्राहिम अक्ष के हैं और सुरों से पिरोया है राजेश रोशन ने।

अभी आपने सुना कुछ कुछ होता है फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना समीर के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं क्यों हो गया ना फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम एक ही रूप, जिसके अंतर्गत आप सुन पा रहे हैं गायक उदित नारायण के गाने और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना मजरूर सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

आइए अब सुनते हैं मेजर साहब फिल्म से अनुराधा पोतवाल और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने, तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में, वो भी कंगना चैनल में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो

नोंमाई थेम पहाड़ी नसकपा ताबू नुंदगी लौखचब इसय अनि मथंग मथंग तामिनरे मथंग द लौखचरीबा सैसकपा अरिबम श्याम शर्मा।

लैकोल खुजिंग चंगुना लैरांग चरुंग इगलुगे खोई मुशायों तालुगे इरांग पाम बचाईरुगे लैकोल खुजिंग चंगुना लैरांग चरुंग इगलुगे खोई मुशायों तालुगे इरांग पाम बचाईरुगे नुजा साइनो लगतगी ना तुम लैरांग भूरुगे नुजा साइनो लगतगी ना तुम लैरांग भूरुगे ओइ न पाइब सना बुल ओइ न पाइब सना बुल याय न बुताव हंगे ओइ न पाइब सना बुल ओइ न पाइब सना बुल याय न बुताव हंगे लग्न रुगे नसीदी सान रुगे कुमई तुम लग्न रुगे नसीदी सान रुगे

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजी नुथल की पुंग अनी तारे दिल्ली दगी रिले द इंग्राजी द पाव ताब फंबीरगने
1: गुड आफ्टरनून दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज the headline

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: अदमने पुंभ मसिदा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल द संदोक चबा यूट्यूब लाइव चैट तगी अदमने खनबिरक पैसै सिंग मथंग मथंग ताबिरे अदम सु सोइदन मकी आइखै के चैनल एआईआर इम्फाल द चंगबिदना एआईआर इम्फाल संगाई लाइव स्ट्रीम के खुथांगदा लाइव चैट ता अदमने खैदा बि पैसै सिंग खनबिरक पयारगनी मथंग असिदी नौरिम लेकाईदगी के आई शांतिबलाना खनबिरक पैसै अमा मुग लानथोकचगे खनबिरकली पैसै असि अखुनबमनी हारिबा फिल्म अदुदगी पुष्परानीना सखपनी सेरिंगबमदि सेरांगबमथंगसिना नरेंद्र निंगोमबमदि तोमबा थांगजम

आकाशवाणी इम्फाल पुंगफा मसीद मयाम के दमक पुदुने लाक्चरी थांग जे कुदिंग संदोक चबे थोरम नाइट मेलोडीज नसी की तांग का कसी की ओइना थोरम लंथोक बिगदबी मनीसा माउ अमदी थोरम पुतोपा कचिंग ताबम रितेश शर्मा द कुसिनचेरी

0: हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। ये गली और ये दर है एफएम गोल्ड की और प्रोग्राम है हर सिंगार। आपके साथ मैं हूं विकास, स्वागत आप सबका।
1: ये

पर्दे पर नजर आते हैं प्रदीप कुमार और साथ में आती है नजर निशी। रेल में फिल्माया गया ये गीत लिखा था असद भोपाली ने। म्यूजिक इस फिल्म का तैयार किया था संगीतकार रवि ने और फिल्म का नाम था तू नहीं और सही। प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक 1958 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अदालत से। लता जी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत और मदन मोहन साहब का करिश्मा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, और आपके साथ इस सफर में मैं विकास। बीते दिनों किसी ने एक बेहद दिलचस्प सी बात मुझसे कही और मुझे पढ़ने में मिली। उन्होंने कहा कि विकास लगता है कि श्रीलंका से होकर आए हैं, और जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई, और वो इसलिए भी क्योंकि एक पल में मुझे समझ आया कि वो ये ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। असल में इसका बैकग्राउंड अगर मैं ये बताऊं तो श्रीलंका में एक मशहूर रेडियो स्टेशन है और वो अपने अनसुने नगमों के लिए जाना और पहचाना जाता है, और अक्सर कुछ ऐसे गीत जब हम और आप सुनते हैं तो होता है ना, हम सब के साथ उस एक पुराने दौर को हम कुछ पल के लिए ही लेकिन जी जरूर लेते हैं। अरुण जनाब ने भी यही बात कुछ ऐसे ही गीतों के साथ जोड़ दी जो शायद उस दिन मैंने आप तक पहुंचाए थे। प्रोग्राम का अगला गीत भी कुछ कुछ हमें उसी दौर में ले जाता है। फिल्म का नाम है फरेब। 1968 की ये फिल्म है और सुमन कल्याणपुर का ये गीत है। असद भोपाली ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इस फिल्म में संगीत दिया है।

लता जी की आवाज और लक्ष्मी प्यारे का संगीत। साहिर ने इस नगमे को लिखा और फिल्म का नाम था दीदार यार। पर्दे पर अगर नजर डालें तो वहां हमको टीना मुनिम और ऋषि कपूर की जोड़ी नजर आती है। गीत को देखेंगे तो पाएंगे कि ऋषि कपूर एक बुजुर्ग के गेटअप में नजर आते हैं और टीना मुनिम सफेद चमकदार कपड़ों में पियानो के सामने इस गजलनुमा गीत को गुनगुना रही है। अब की बात करें, यानी हाल फिलहाल की बात करें, तो पियानो और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स पर्दे पर दिखना ना कम हो गए हैं। जैसे हम पुराने गीतों में देखते थे ना, तो वहाँ कभी संतूर, कभी सितार, कभी हारमोनियम वगैरह दिख जाते थे और वो गीत के साथ ना जाते भी थे और गीत की रंगत भी बढ़ाते थे। बहरहाल, प्रोग्राम का अगला गीत इसी तरह के नगमे को, यानी कि जो भी गीत आपने सुना तुमको देखा, तो इसी गीत को कुछ कुछ अलग अंदाज में गुनगुनाता है।

आशा जी की आवाज और जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गीत सी अर्जुन की तर्ज। इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं मैं आपको। प्रोग्राम चल रहा था हर सिंगार, आपके साथ था मैं विकास, और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के

0: निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of North Eastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna-Ukai-Songar section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Dr. Wagle said this while addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepalese side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolences over the deaths in a road mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away by a rain-swollen stream near Nalkheda. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Ria Chhavri secured victory for secretary and Lakshraj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pavan Sehrawat during the athletes' parade. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with business and market. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: A warm welcome, शरद
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद राजेश सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ And US stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया मार्केट का हाल कैसा था तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक तनाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही वहीं एफएमसीजी हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रुपए पर बंद हुआ और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं बबलू जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
3: हाँ मैडम
1: बबलू जी आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए
3: क्या मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको
1: जी
3: हाँ मैडम मेरा सवाल ये है मैडम भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है उसका क्या फ्यूचर है आगे में क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर वो बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में
2: बबलू देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लैंड है अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूंगा जो लैंड है जहां पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है
1: जी।
2: जहां पर शहर एक्सपैंड करता है वहां पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है बबलू जी वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है तो ये इसको हम यूनिवर्सली पूरे क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा. तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते. ऐसे ही मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं, उनमें कहीं रिसेशन नहीं है. बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफी बूम किया और उसके बाद इसमें एक प्लेटो फेस आता है. ये इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है, फिर इसमें प्लेटो फेस आता है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है. तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं. ये मतलब एक एक एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा. तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहां पर शहर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हैं. शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी, शहर भी चलते हैं. आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहाँ तो मॉल बन गया, यहाँ तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं. तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे बी आपका नजरिया बदलेगा. बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुनकर लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर उसको रिकवर करने.
0: जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली इज अमित झा. वार्म वेलकम अमित. Hello, Amit, can you hear us? I think we've lost touch with him.
4: Hello.
0: Yash, yeah, Amit?
4: सर आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल आ रही है. आप सवाल पूछे अपना.
4: हाँ सवाल लीजिए. सर सर नमस्कार सर.
2: हाँ नमस्कार अमित.
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का, हाँ. नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है. रोल ओवर सर आप जानते हो डेरिवेटिव का.
2: हाँ जी.
4: तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर.
2: ओके चलिए पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित. ये डेरिवेटिव्स में होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं. तो ज्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो रोल ओवर जब होता है जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसका उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं. वरना क्या होता है आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है. तो रोल ओवर यही बताता है. या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज्यादा मुनाफा आएगा. ये भी कारण होता है रोल ओवर का. दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआई इसको बोलते हैं. ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं. क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है. अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं तो चेन में एक लेवल पर अगर ज्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं. ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि क्या इस लेवल पर बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं. बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने. मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, बहुत रेगुलर कॉलर है. पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी कभी कभी अक्सर धोखा भी दी जाती है. तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स. तो मैं उम्मीद करता हूं अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूं ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा.
1: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं. महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: हेलो
1: जी सतपाल जी, अपना सवाल पूछिए.
5: हाँ कॉलेज जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार.
2: नमस्कार जी.
5: मैं कॉलेज की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो के लिए देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ
2: जी.
5: और मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले दो साल में, लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप? थैंक यू.
2: चलिए आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड का, गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे पर. अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो सिचुएशन है उसमें कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में काफ़ी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं. तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफ़ी शाइन का पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है. और आपने लॉन्ग टर्म नज़रिया रख के चले, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रखें. और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा. मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में. मार्केट्स के लिए बहुत टफ टाइम आया है. मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है मार्केट्स को किसी की नज़र लग गई है क्या हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद से वो बिल्कुल निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया. अगर निफ्टी 50 की बात करूँ तो अभी सेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं सतपाल, पर थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है मार्केट्स हो क्या रहा है, हमें एक मिनट आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा. मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही हैं, मार्केट जो है वो अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही हैं. क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई अमेरिका में कैसे, तो थोड़े से जो अंतरराष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी बहुत अच्छी नहीं है. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है मार्केट में भी. बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस दो के आप नजर रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूं. बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं वो इस समय सिचुएशन है जी.
1: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं. संजीव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: हाँ नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा.
2: नमस्कार संजीव बताइए.
6: हाँ कोहली साहब आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें.
2: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए.
6: थैंक यू कोहली साहब. एक सवाल है, 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैग में इन्वेस्टमेंट किया था
2: जी,
6: ज्वाइंटली
2: जी.
6: अच्छा वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया.
2: अच्छा
6: प्रोजेक्शन देने के बाद उसकी रजिस्ट्री भी हो गई
2: जी
6: उस एरिया में कंसर्न
2: जी.
6: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट यू कॉल फ्रॉम डेट ऑफ प्रोजेक्शन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन.
2: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका आपका मालकियत मान लेते हैं. तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का तो आप उस डेट से मान के चलेंगे, तो आप मेरे ख्याल क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है. तो मैं संजीव आपको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं. बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं जी.
0: हिना प्रसाद जॉइंस अस फ्रॉम बेंगलुरु, अ वार्म वेलकम मिस्टर प्रसाद.
7: हाय गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज हिना प्रसाद फ्रॉम बेंगलुरु. हेलो राजेश जी, हेलो प्रिया जी.
1: हेलो सर.
7: शरद जी टू क्वेश्चंस.
2: यस.
7: The first question is a lot of IPOs coming from the leading companies.
2: Yeah.
7: One IPO is getting close on the 21st. I don't want to name the company.
2: Yeah.
7: At least in this volatile market, is it worth investing in this kind of a scenario? Is it worth in these leading companies? My second question is, this is a continuation of the question which I've asked about 2-3 weeks back.
2: Yeah.
7: So for the profit booking, now I am holding 30% of the defense sector, 20 each in banking, IT and FMCG.
2: Okay.
7: The balance 10 are in automobile and other few in the thing.
2: Okay.
7: In this, everything is in the profit, in the very good margin, except for the IT sector.
2: Okay.
7: So which companies to be sold and how much to be sold in terms of percentage? Thank you. These are my two questions.
2: Okay. Although, Mr. Prasad, you have not named the companies, but the questions are quite, specific. But nevertheless, I'll try and answer. IPOs, I was reading a report on the recent IPOs.
8: news which came, and it so came out that almost four or five of the IPOs are sort of listing at premium, not all of them, you know. So therefore I feel that you know, you have to be very selective. So I can't generally, Mr. Prasad, say that what should, because some of the IPOs are quite attractive also, whereas some of them may not be good enough. Some of them are not getting listed at their price band. They are getting listed below the issue price. So you have to, you know, I think in an IPO there needs to be a tick box, a checklist, you know, who's the promoter, what are the prospects, and so on. So, and then of course the market sentiment at that time also governs the listing price. So you know, a general view about IPOs, Mr. Prasad, cannot be given, because I'll have to go into specific, which we don't name, as you rightly pointed out. Second is, you spoke about defense sector and your IT sector. So therefore I would not recommend, Mr. Prasad, booking a loss in IT sector. However, I would recommend booking some profit in the other sectors, like you mentioned about defense, you mentioned about FMCG, banking. So I may not hesitate to say that you know, you can probably book profits. And I feel the situation in the market is such that if you take the profits home, you should be a happy man, you should be a lucky man, because a lot of people around the world at this point of time are facing this problem. They are not able to book profits. So therefore I would recommend, how much profit to book? See, there are certain questions with Rajesh and Prachi would agree, that it depends upon your overall portfolio, your requirements, your cash flow requirements, how long, what is your risk taking appetite, what's your age, what's your remaining portfolio like. So you know, Mr. Prasad, I hope you understand that these are the things which we need to know to be able to decide that how much to exit, how much to keep, because it depends. If you don't need the money, maybe I'll say keep it for a very, very long time. But then the problem is, if I say for 10 years, then you might say, I mean, why 10 years? That's a very long period. Therefore, I will recommend in profits, wherever you are in profits, you book the profits. And wherever you are in loss, I think it is worth waiting, because as it is, you are in loss. Maybe you'll add a little more to the loss. But if you book the loss now, your loss is confirmed. So if the market rises, market is going to rise. It is right now under a depression, but then it will rise definitely in the times to come, hopefully.
1: बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए. टिंकू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए
8: टिंकू जी.
9: हेलो.
8: हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी.
9: सर, मैं ये पूछना चाहते हैं, मैं किसी कंपनी में ऐसी मैं काम करते हैं लेबर में, और मेरा सैलरी जो भी आता है मेरे कैश में मिल जाता है, ना कोई चेक है ना कुछ है, और किसी कंपनी को मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत आवे फैमिली में, इसीलिए तो मैं आम आदमी.
8: मुझे लगता है इनसे संपर्क टूट गया, पर इन्होंने अपनी बात ऑलमोस्ट कह दी. कैश में इनको सैलरी मिलती है, और शायद किसी में डेली कॉन्ट्रैक्ट टाइप शायद काम करते हैं, या सैलरी मिलती है. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा विचार है टिंकू जी का, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का. मुझे लगता है इसके लिए आपको, देखिए, अगर तो आप कंप्यूटर सेवी हैं तो आप ऑनलाइन जाके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है, पर अगर आपको उसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है उनसे आप संपर्क करें, और संपर्क करके वो आपकी मदद करते.
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं. सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
10: गुड इवनिंग सर. कोहली साहब,
8: गुड इवनिंग
10: सर. मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर, ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे, डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
8: जी,
10: और ये लास्ट डेट क्या है सर पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर.
8: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है. मुझे निजी तौर पे एक दो इनॉग्रेशंस थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहाँ जाने का मौका मिला, और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं. बहुत अच्छा भविष्य है जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते
0: हैं. प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप.
8: नहीं, फर्क तो है, उतने महंगे तो नहीं है, इतने महंगे कैरेटेज पर डिपेंड करता है. और दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का कि हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफी समय से सवाल रहता है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहां होकर आएं,
2: हम जहाँ इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें। नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है क्योंकि काफी वहां पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय, पर मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहां अटका हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें। और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उन पे भी आप डालें, वहां पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं। तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करें, अब ये तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए, उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
11: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
12: हेलो
1: जी,
12: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
2: जी।
12: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
2: जी,
12: और शेयर बेस्ट में 3 लाख कमा रहा हूँ
2: जी,
12: प्रॉफिट हुआ
2: जी।
12: तो मुझे टैक्स शेयर पे

0: हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम है तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है। तो इसलिए आपको मेरे विचार से पवार साहब आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
1: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रुपए और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपए होगी। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
0: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। पहले भी था, क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उसमें 1.5%, 2%, 2.5%, कुछ बैंक तो 2.5% लेते हैं, तो उसमें वेंडर को एक चार्ज देना पड़ता है जो कि उसको वो सुविधा ये ग्राहक को देता है। और ग्राहक, बहुत सारे नए ग्राहक उसको मिलते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो लेके व्यक्ति आता था
1: जी,
0: तो उसके पास कैश नहीं होता था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के जरिए बैंक एक चार्ज लगाते हैं। कुछ इसी प्रकार का UPI पे अब ये नया आया है, क्योंकि 10 साल से UPI चल रहा था और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसमें नई नई फीचर्स लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक बोझ पड़ रहा था। पूरा की पूरी जो प्रणाली थी वो प्रणाली स्वचालित होनी चाहिए। उसमें 18,700 करोड़ रुपए बीच में प्रणाली खर्च कर रही थी, 2,000 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार के भी खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे, प्रावधान तो यही है प्राची कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है
1: जी।
2: Major US indices displayed a mixed performance yesterday. The Nasdaq Composite Index rose 0.4% and the S&P 500 added 0.2%, led by gains in semiconductor stocks. Conversely, Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Meanwhile, markets wrapped up a volatile week on a mixed note as investors navigated rising treasury yields, elevated oil prices, and Federal Reserve's rate hike. For the week, the Dow posted third straight weekly decline, sliding 1.7% to mark its worst performance since March. The S&P 500 fell marginally by 0.1%. In contrast, Nasdaq rose 0.7%.
1: दिल्ली से हमारे साथ आरएस दहिया जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, कोहली जी को स्पेशल नमस्कार।
0: नमस्कार दहिया सर,
3: मेरा क्वेश्चन ये है कोहली साहब से कि स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम फॉर लास्ट 2.5 years
0: जी।
3: व्हेन विल आर निफ्टी इंडेक्स एंड BSE सेंसेक्स will reach its all-time high level or somewhere closer to that, maybe plus 15% from here.
2: I wish we knew.
0: All right. Well, if wishes were horses, we would have ridden them, as they say. Dahiya Saab, it is true that it's been almost 2.5 years. You rightly said that, we've been, the indices have. But I feel that people who are, you are a very mature investor, Mr. Dahiya, and I feel these are the cycles which normally come in any investor's, overall career, I would say. Overall span, should I say. So I think let's keep our fingers crossed, and we need to see that the geopolitical and geoeconomic situation around the world, Mr. Dahiya, is not letting the market go up. The Indian parameters are fine, but then somehow the markets are looking at the global picture, the global crude oil bond yields, crude dollar index, and so on and so forth. So let's hope for the best. I think once the war ends and Strait of Hormuz and Bab el Mandeb, these routes open, the crude oil prices cool down, and we will see the market. So I think patience is a virtue, I would say. So आपने इतना धैर्य रखा है दहिया साहब, तो थोड़ा सा और धैर्य रखें। बाकी आपके मुंह में घी शक्कर, 15% कब बढ़ेगी, हम तो कहते हैं कि जल्दी बढ़े, आपकी बात, आपके वचन सत्य हो।
2: US President Donald Trump has signed a law expanding sanctions against Russia and providing for tariffs of up to 100% on major buyers of Russian oil and gas, while extending US sanctions authority against Iran for 5 years. The

0: White House said the measure authorizes and expands statutory sanctions, tariffs, and prohibitions on Russia. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. During the week, Brent crude November futures dropped 0.7% to settle at $103.87 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures added 0.2% to end at $100.30 per barrel. Oil prices eased in the last few trading sessions as markets anticipated that the closure of Saudi Arabia's key pipeline will have a smaller impact on supplies than initially feared.
1: शरजी कार्यक्रम में आने के लिए क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा है भाई तो आज हम इतना डिस्कस कर पाए जो कि बहुत ही अच्छी बात
0: है बहुत धन्यवाद आपका
2: थैंक यू सो मच
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स डिक्लाइन फॉर सिक्स कंसेक्यूटिव वीक प्राइम मिनिस्टर सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ एंड यूएस स्टॉक इंडेक्स रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा टिल टुमारो गुड बाय
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:41 हो चुके हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रोग्राम का यह आखिरी गीत सोनू निगम की आवाज के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखिएगा अपना ख्याल और उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करिकला और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बादल बरसने और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai yani aaj gaon kasbe aur chote shahar ka yuva bhi भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
2: Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved Kavach 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division at a cost of over 250 crore rupees. The project will expand Kavach 4.0 coverage and strengthen train safety. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge on Udhna Ukai Songar section of Western Railway, while electronic interlocking will be installed at 7 stations in the Solapur division at a cost of over 200 crore rupees. Railways has also approved a project worth over 142 crore rupees to upgrade the electric traction system on the Savalyapuram Guntur section. Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem, featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries, and over 150 speakers. The event recorded 51,656 total registrations and cumulative footfall of about 40,000. The 3 days witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections for proposed inclusions or deletions of name in electoral rolls and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will assist people with Form 6 for new registration, Form 7 for objections or deletions, and Form 8 for corrections or updates. At the Chess Olympiad in Samarkand, the Indian men's team continued its fine run, defeating Spain 3-1 with D. Gukesh winning his game against Alexei Shirov. Meanwhile, R. Pragnananda and Nihal Sarin drew their matches. The women's team also beat Mongolia 3-1. B. Savitashree and Divya Deshmukh won their games, while R. Vaishali and Kuneru Hampi secured draws. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अंग वस्त्र। ये कहानी आपके लिए लिखी है नीलम ए कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अंग वस्त्र।

राज आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना, मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। भाई की शादी जो आ रही है और होने वाली भाभी के लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस भी चाहिए मुझे, राज की पत्नी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा और फिर चलेंगे। वैसे जाना कहाँ है? अरे ये जो मार्केट है ना, यही एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छा बुटीक है, उसका नाम है अंग वस्त्र। मेरी फ्रेंड बता रही थी दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं वहाँ कपड़े खरीदने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और वैरायटी है उनके पास। अब मैं सोच रही हूँ वहीं चलते हैं।

राज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कुछ आधे घंटे में ही वो बुटीक में पहुंच गए जिसका नाम था अंगवस्त्र। एक आलीशान बुटीक, 50-60 वर्कर तो थे ही उनके पास। एक से बढ़कर एक ड्रेस, साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे शोकेस में, बहुत ही मनमोहक डिजाइन। राज की पत्नी एक साड़ी काउंटर पर जाकर साड़ी देखने लगी, तभी बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला बाहर उतरी। गोरा रंग, काले लंबे बाल, शिफॉन की सफेद साड़ी, हाई हील और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए। वो जैसे ही बुटीक में दाखिल हुई, सारे वर्कर्स और मैनेजर खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। राज ने एक सेल्समैन से पूछा, ये कौन है? तो वो बोला, अरे यही तो है इस बुटीक की मालकिन। राज ने उस महिला की ओर मुड़कर देखा, जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे, राज देखता ही रह गया। मधु, तुम? मधु ने राज को पहचान लिया। राज को देखकर वो बहुत विचलित हो गई। वो अपने केबिन में चली गई जहाँ उसका ऑफिस था। मधु आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठ गई और अपने अतीत की यादों में डूब गई।

मधु अपना 12वीं का परिणाम देखकर खुश हो गई। CBSE के 12वीं में उसने टॉप किया था। बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी मधु। परिणाम देखकर वापस घर लौटते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। अरे इतना खुश क्यों हो, पास हो गई क्या? पास नहीं माँ, मैंने टॉप किया है, मधु ने खिलखिलाते हुए अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मधु की माँ की आंखों में आंसू छलक आए। मधु जब 5 बरस की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी। बड़ी ही कठिनाइयों से वो मधु और उसके छोटे भाई का पालन पोषण कर रही थी। रात को लोगों के कपड़े सिल सिल कर वो किसी तरह से गुजर बसर करती थी। दिन भर मेहनत कर वो उनकी शिक्षा, खान पान

और सुख सुविधाओं को किसी तरह से पूरा कर रही थी। मधु बहुत ही खूबसूरत किशोरी थी, पतली लंबी तीखे नैन नक्श, लंबे घने और घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें थी उसकी, बहुत ही मनमोहक लगती थी। स्कूल समय से ही मधु एक लड़के राज को पसंद करती थी। राज उसके पड़ोस में ही रहता था। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ता था। स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट में राज ने मधु की मदद की थी। आज राज ने मधु को मिलने एक बाग में बुलाया था। ठीक 5 बजे वो वहाँ पहुँच गया और एक हार सिंगार के पेड़ के नीचे बैठकर मधु का इंतजार करने लगा। नीचे छोटे छोटे सफेद फूल झड़ रहे थे, मानो जैसे इस पेड़ के फूल मधु और राज का स्वागत कर रहे हों। तभी वहाँ मधु आ गई और उसके पास बैठ गई।

सुनो राज, पता है मैंने आज परीक्षा में टॉप किया है। राज चुपचाप बैठा था, खोया खोया सा। क्या तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई? चुप क्यों हूँ, बोलते क्यों नहीं? मधु, तुम जानती हो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और उनकी दुकान तो है ही। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर उनकी दुकान में हाथ बटाऊं। साथ ही वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तक देख लिया है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, पर उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अगले महीने की 11 तारीख को मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ नहीं बोल पाई। राज भी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों ना हम कहीं दूर चले जाए। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। राज, उसे बहुत मुसीबतें उठाकर मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है। राज ने मधु को समझाया, मधु देखो, हम दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हार कर मधु ने राज की बात मान ली। अगले दिन मधु घर नहीं लौटी। जब मधु बहुत देर तक घर नहीं आई तो उसकी माँ व्याकुल हो उठी। सब जगह ढूंढा पर मधु कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी? रात के 8 बज चुके थे। मधु की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पड़ोसियों की सलाह मानकर मधु के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी और साथ में उसके मामा को भी सूचित कर दिया।

इधर मधु और राज एक अस्पताल के बाहर बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राज बोला, मधु चलो घर वापस चलते हैं। बहुत बड़ी गलती की घर से भागकर। क्या कह रहे हो तुम? मैं अब घर वापस कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं? अपनी माँ का सामना कैसे करूं? वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे कारण उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग ताने मारेंगे। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। नहीं नहीं राज, मैं वापस घर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे भरोसे पर ही मैंने अपना घर छोड़ा है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। मधु ने ऐसा कहकर राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। राज को उम्मीद थी कि मधु आएगी तो वो अपनी माँ के कहने और कुछ ना कुछ रकम लेकर जरूर आएगी। पर जब उसने देखा कि मधु के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसे समझ में आ गया कि आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। उसने बड़ी निर्दयता से मधु से अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर वापस चला गया।

इधर अस्पताल के पास मधु को रोता देख एक आदमी उसके पास आया और इस वक्त यहाँ होने और रोने का कारण पूछा। मधु ने सारी बात रोते रोते उस आदमी को बता दी। कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरा परिवार भी वहीं रहता है। इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ कैसे वक्त बिताओगी? मेरे साथ चलो, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मधु पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर जब उस आदमी ने भरोसा दिया तो उसके साथ चल दी। जैसे ही उस आदमी के घर पर पहुंचे तो मधु ने देखा कि वो तो एक छोटा सा कमरा था, वहां तो परिवार का कोई सदस्य नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपका परिवार किधर है? मधु ने थोड़ा घबरा कर पूछा।

अच्छा, वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने मधु को धक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरी। उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मधु को समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इधर मधु के मामा ने राज को बुलाकर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि मधु को उसने कहां छोड़ा था। फिर मधु के मामा ने उस एरिया के आसपास मधु को ढूंढना शुरू किया और 2-3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मधु के मोबाइल फोन को ट्रैक कर उसको बचा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मधु को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। मधु ने अपनी आप बीती माँ को बताई और उससे लिपट गई। माँ ने मधु को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी बिलख बिलख कर रोने लगी।

मधु का दिल टूट चुका था। कहां वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर अब उसके सपने बिखर चुके थे। समय बीतता गया, मधु को पता चल गया कि राज की शादी एक बहुत अच्छे खानदान में बहुत सुंदर और सुशील लड़की से हो गई थी और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर मधु की माँ ने भी अपनी बेटी की शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया। बोली, माँ मेरा भरोसा अब इन संबंधों से उठ गया है, तो क्या उम्र भर ऐसे ही बैठी रहोगी? इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे काटोगी बेटा? माँ, जीवन में शादी ही सब कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मधु ने फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स किया और एक डिजाइनर बन गई। बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का काम जानती थी। मधु की माँ पहले से ही सिलाई के काम में होशियार थी। ऐसे कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का, कढ़ाई का और काज बटन का काम जानती थी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा, कई महिलाओं को काम मिलने लगा, बहुत सारे कारीगर उसकी दुकान से जुड़ गए। इसमें उसको अपनी माँ की बहुत सहायता मिली। उसका बुटीक अंग वस्त्र धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चला था। मधु ने दिन रात मेहनत कर अपने उस छोटे से बुटीक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज अंग वस्त्र पूरे शहर में जाना माना बुटीक बन चुका था। दूसरे शहरों से भी लोग वहां खरीदारी करने आने लगे थे। उसके बुटीक के कपड़े दूसरे शहरों में और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। आज मधु एक संपन्न और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। मैडम देखिए, ये ड्रेस तैयार हो गई है, ठीक है ना? अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो बाकी ड्रेसेस भी बनने भेज देंगे। ये ऑर्डर हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है, मधु के मैनेजर ने मधु से कहा। मधु ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और ड्रेस देखकर बोली, हाँ हाँ एकदम परफेक्ट, आप ऑर्डर तैयार करवाइए। वो उठ खड़ी हुई अपनी पूरी हिम्मत और जोश के साथ। मधु ने बाहर झांका तो देखा राज मुंह लटकाए हुए उसके बुटीक अंग वस्त्र से बाहर जा रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि अब वो एक सशक्त मधु का सामना भी कर पाए। मधु जानती थी कि उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। ऐसी ताकत जिसके बल पर वो आज जमीन से उठकर आसमां तक पहुंच गई।

नहीं ऐसी लड़कियां होती हैं दोस्तों, जो जीवन में कठिनाइयों के बाद हिम्मत हार जाती हैं। याद रखिए, तरह तरह की जो कठिनाइयां होती हैं वो हमारी परीक्षाएं लेने के लिए ही आती हैं। यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगी तो यकीन मानिए, आप दुनिया को जीत सकती हैं। ये कहानी कुछ ऐसा ही हमें सिखाती है, किसी भी परिस्थिति में जीवन के दुखों और परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंगवस्त्र, जिसे आपके लिए लिखा था नीलम ए कुमार ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, इसको समेटने की इजाजत दीजिए रश्मि कुकरेती को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनखड़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. Three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem, featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. Three-day witness 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnaw said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
2: India has dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepalese side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. The Nasha Mukt Yuva for Viksit 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaro will be organized at 1,067 locations, including 471 district Nai Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide movement of youth participation, bringing together Nai Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and Nasha Mukt future. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured three major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chavdi secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections or proposed inclusions, or deletions of name in electoral rolls and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will assist people with Form 6 for new registration, Form 7 for objections or deletions, and Form 8 for corrections or updates. The 20th Asian Games 2026, which was opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines this morning. Tech ball player Quincy D'Souza will compete in the bronze medal match against Shetan Zuina Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Alan Valaravan, Sonam Muskar and Vidar Savanil will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event at 6:15 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वैसे कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना जब किसी इंसान की वजह से हम मुस्कुराते हैं और कोई इंसान हमारी वजह से मुस्कुराता है ना। गीत की बात करें तो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, और फिल्म का नाम था पतीता, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1953 में आई थी और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था अमिया चक्रवर्ती ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, उषा किरण, आगा और ललिता पवार ने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

इसे बिछुआ नहीं इश्क का खुमार कहते हैं। गीत आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और बन्ना डे की आवाज में। संगीत सलील चौधरी का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बिमल रॉय। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज़ में।

बार बार देखो नहीं, बार बार सुनो, क्योंकि हम बोलते हैं आप ही के लिए. गीत आप सुन रहे थे रफी साहब की आवाज में, फिल्म का नाम चाइना टाउन, संगीत रवि का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी. ये फिल्म आई थी 1962 में और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण किया था शक्ति सामंता ने. और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शम्मी कपूर, शकीला और हेलेन ने. अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप ही के लिए.

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सौदेश पिलो 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 3 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म उजाला से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हजरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला

टिटनेस और टुनटुन ने। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सैगल ने। और अभी जो गीत मैंने आपको सुनवाया था, इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शमी कपूर और माला सिन्हा पर। इस फिल्म के संदेश की बात करें तो ये इस फिल्म ने संदेश दिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, इसलिए जिंदगी में हमेशा ईमानदारी करते रहिए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और संगीत था चित्रगुप्त का, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1961 में और

का निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने, फिल्म में अभिनय किया था अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज में और फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai. Yani aaj gaon, kasbe aur chote shahar ka yuva bhi भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है.
2: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up to the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnav said that India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
2: Indian Railways has approached coverage 4.0 on 607.7 route kilometres of the Lucknow division at a cost of over 250 crore. The project will expand coverage 4.0 coverage and strengthen train safety. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road over bridge on Udna-Ukai-Songad section of Western Railway. While electronic interlocking will be installed at seven stations in the Solapur division at a cost of over 200 crore rupees. Railways has also approved a project worth over 142 crore rupees to upgrade the electric traction system on the Savalyapuram-Guntur section. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroha will be organized at 1,067 locations, including 471 district My Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and a Nisha Mukt future. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured three major posts in the Delhi University Students Union DUSU election. ABVP's Yashda Bas won the president post for president, while Ria Chavri secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games 2026, which has opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines this morning. Tech ball player Quincy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuina Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Elevenil Valaravan, Sonam Muskar and Vidar Sabanood

कैसे कहूं कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। कैसे कहूं कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। जितनी कितनी बार कहूं चले आओ, कितनी बार कहूं चले आओ बिना ये सोचे कि क्या कहेगी ये दुनिया। स्वादिष्ट प्लेवे प्ले का हर्ष पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 18 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

वैसे गाने से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का प्रोग्राम किस दिशा में जाने वाला है। जी हाँ, प्यार की गलियों में, यानी साजन की गलियों में। तो चलिए फिर देर किस बात की, अगला गीत आप ही के लिए।

कितनी खूबसूरत बात है ना कि फूल कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर मन हमारा किसी अपने से मिलने का कर रहा हो तो फिर बाकी चीज़ें फीकी लगने लगती है ना। और जब बात हो साजन से मिलने की तो इंतज़ार की घड़ियाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। चलिए, जब तक साजन से मुलाकात नहीं होती हम साजन को ख़त लिखते हैं। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसे बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 34 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि किसी किसी की आंखों में हमें इतना प्यार मिलता है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आंखें इतना कुछ कह देती हैं, एक नज़र मिलती है और दिल की न जाने कितनी बातें बयां हो जाती है। और शायद इसीलिए ही मोहब्बत में कहा जाता है कि ज़बान की आंखों से ज़्यादा आंखों की बातों का ज़्यादा मतलब होता है, महत्व होता है। गीत अब तक पहुँच रहा है अगला, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फ बॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फ बॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 3:11 और 18 सेकंड। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ और रूपा आपके लिए लाई है बेहद ही हसीन पलों की बहुत ही खूबसूरत से गीत, और ये गीतों से सजा गुलदस्ता आप सुन रहे हैं अपने ही चैनल, पसंदीदा चैनल पर, आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो बहुत ही प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।

साथियों, 60 के दशक के गीतों की लोकप्रियता आज भी अपने चरम पर होने की एक बेहद खास वजह है। वो वजह है उसका बेहतरीन संगीत, जिसे हर प्रशंसक दिल से अपना कर उसके सुरों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि इन गीतों का जलवा दशकों के बाद भी आज कायम है हम सबके दिलों में। समय की दीवारें तोड़कर ये गीत आज भी अपनी खुशबू से सबको ताज़ा तरीन कर देते हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और लाजवाब गीत, जिसे हम शामिल कर रहे हैं अनाड़ी फिल्म से, मुकेश साहब और लता जी के स्वर में।

दो दिलों का मिलना और मुलाकात की खुमारी ऐसी कि मुलाकात के बाद उनकी बातें यादें बनकर एक दूसरे के कानों में गूंजने लगती हैं। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, क्या बातें हुई, अक्सर दिल ये भी भूल जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमराही कार्यक्रम में। समय हुआ है 3:37 और 52 सेकंड। आप हैं हमराही में रूपा के साथ और लुत्फ ले रहे हैं कुछ मधुर से तरानों का। अगला गीत आप सभी के लिए गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और शारदा जी की आवाज में।

साथियों, फिल्म जगत में प्यार की रोमानिया को दर्शाने के लिए अथक प्रयास किए जाते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। नायक नायिका जब पेड़ों के इर्द गिर्द झूमते हैं, गाते हैं, तो वो नज़ारा कुछ और ही खास रंगों से भर जाता है। ये नज़ारा दर्शकों को और भी मोहित कर देता है। फिल्म महबूबा का ये गीत लता जी और किशोर साहब की आवाज़ में।

तेरे बिना ये जिंदगी एक उल्फत सी लगती है, तेरे बिना ये जिंदगी एक उल्फत सी लगती है, लम्हे की जुदाई मुद्दत सी लगती है, इतने वक्त बाद मुझे महसूस हुआ कि हर पल तेरी ज़रूरत सी लगती है।

सफर कितना भी लंबा हो, अगर साथ दो दिलों का सच्चा हो तो बातें कभी खत्म नहीं होती। दो दिल एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं।

तो दूर होकर भी इतना पास लगता है, दिल के हर कोने में तेरा एहसास रहता है। जी हाँ, वैसे हम तो आपके दिल के करीब रहते ही हैं और इसके लिए हमें और आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। जी हाँ, प्यार भरा रिश्ता, सच्चा रिश्ता एक अलग ही दुनिया को कायम करता है। हमराही का सफ़र फिलहाल इतना ही। अभी रूपा विदा लेती है, अरुणिमा के सफ़र पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आपसे कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकें, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने विवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लोग नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची के विवरण में सुधार या अपडेट के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बारे में मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस में शामिल सूची के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भी विचार कर सकते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai. Yani aaj gaon, kasbe aur chote shahar ka yuva bhi भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है.
2: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.

तारों की छिटकती चांदनी में अरुणिमा कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 4:11 और 25 सेकंड। आप हैं इस सफर में, इस खूबसूरत से सफर में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ अब्दुल्ला फिल्म से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के स्वर में।

अरुणिमा में एक नई शुरुआत ऊर्जावान से भरा उजाला, तैयार हैं हम सकारात्मकता और उम्मीदों का कारवा लेकर, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए इसके प्रकाश के साथ मन के हर कोने को खुशियों के उजालों सा प्रकाशित कर दें, ऐसा प्रकाशित कर दें कि ये इतना हसीन लगे कि जिंदगी का रूप ही अलग सा निखर कर आए।

साथियों, हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच का प्रभाव बहुत गहरा असर डालता है। अब सोचिए ना, जब हम किसी भी बात को लेकर मायूस हो जाते हैं, तब किसी का एक ऐसा शब्द या वाक्य हमारी हताशा को एक नई उम्मीद में बदल देता है। फिलहाल आपको सुना रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत लता जी और किशोर साहब के स्वर में, फिल्म दासी।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने ही मनपसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:33 और 57 सेकंड।

ये सच है कि सबकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। ये भी सच है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बस जितना है उसके लिए शुक्रिया और आगे बढ़ने की कोशिश करना ही जिंदगी का नाम है। किसी ने खूब कहा है, हर कार्य या हर चाहत मुश्किल जरूर होती है, पर मुमकिन जब होती है तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, और वो खुशियों की बहार होती है समय।

हम लोग जिंदगी में अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य सोच कर रखते हैं कि हमें ये लक्ष्य पाना है, और लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी बड़ी होंगी। इसलिए लक्ष्य से ध्यान ना हटाकर बाधाओं को पार करते रहना ही है, और आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। सुन रहे हैं आप अरुणिमा कार्यक्रम अपनी दोस्त रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बातें हो रही हैं सकारात्मक विचारों की, जुड़ रहे हैं हम सकारात्मक रूप से इन बातों से, और साथ ही साथ आपको सुनवा रहे हैं कुछ हसीन नगमे।

सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सुनते हैं काजल फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और आशा जी के स्वर में।

मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ, हौसले बनाए रखिए और प्यारी सी एक मुस्कान भी बनाए रखिए जो आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल अरुणिमा का सफर यहीं तक, रूपा विदा लेती है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, भोर सुहानी लेकर फिर से आपके साथ रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने निविवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को आज से अगले सोमवार तक अंडमान सागर और अगले तीन दिनों तक पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। हौसी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने सुबह हुई इस कोशिश के काफी देर बाद बयान जारी किया। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेक बॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, सुबह का उजाला अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ज्योत को प्रज्वलित करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये महज उजाला नहीं है, जी हाँ। आइए आज की भोर को एक नई उमंग के साथ स्वागत करें।

जीवन पथ पर जीवन की राहें चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे मन का विश्वास हौसला बुलंद है तो हम दुनिया पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण दुनिया के हर कोने में हैं। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

जी हाँ, मन की शक्ति और हमारी कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो हम सभी ने सुना है और हम सभी जानते हैं। तो फिर भी हम क्यों इस छोटे से लफ्ज को हमेशा भूल जाते हैं? जी हाँ, ज़रा सी कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम हताश होकर, मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं तो उस मुश्किलों का सामना हम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए कर लेते हैं। और फिर उसके बाद तो दिल गुनगुनाने की सदाएं देने लगता है एक नई ऊर्जा के साथ। जी हाँ, भोर सुहानी दस्तक दे रही है, संदेश दे रही है आपको कि भोर हो गई है और अब एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संदेश के साथ आज के दिन को शुरू करें।